0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
2: This show is brought to you by.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
1: City FM 89.
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
6: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है. और स्पेस भी काफी है.
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
6: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
8: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती.
10: इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
11: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
9: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
12: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
13: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
14: क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हेडलाइन. इट्स इन आवर फ्लडेड स्ट्रीट्स, आवर लॉन्गर हॉटर समर्स, आवर अनप्रेडिक्टेबल सीजंस. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
15: Breathe Pakistan,
16: a Dawn Media initiative.
15: Let's weather the change
16: together.
1: City
0: FM
1: 89.
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.
17: Welcome back, everyone. It's time for Tech Spotlight. And let's talk about the fact that Meta could be about to launch a rather unusual pair of smart glasses. The one without a camera, basically. So according to the information, Meta is developing a new model reportedly called Luna, with shipping potentially beginning as soon as October. The glasses could be officially unveiled at Meta's Connect developer conference on the 23rd and 24th of September. Luna is expected to come in two styles, Clubmaster and Burbank. Now the interesting part, there's no camera. Instead, the glasses reportedly have 6 built-in microphones and speakers directed towards the wearer's ears, allowing users to interact with Meta's AI assistant. There's also a button on the side for quickly activating Meta AI, while the slimmer temples are designed to make the glasses look more like ordinary eyewear. And that camera-free approach could be a very deliberate move. Meta's existing camera-equipped smart glasses have faced criticism over privacy concerns, particularly fears that people could secretly record others. So Luna could be Meta's attempt to offer the smart glasses experience without the part that makes people uncomfortable. Basically, AI glasses but no sneaky camera. And quite honestly, I don't know why they didn't launch that in the first place. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein. Ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
9: Sab mud mud ke dekh rahe hain.
10: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kafi hai.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
11: Achhi hai par मुझे तो 8-seater चाहिए थी
10: जी बेगम साहिबा आपके लिए पैलेसेड स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ इसमें 8 seats का ऑप्शन है
11: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप प्रीमियम हैज इट्स शेप
12: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में जरूर आइएगा
13: The wait is finally over. Next up, Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
14: अब मिलेगी आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग वो भी यहीं पाकिस्तान में इन प्राउड एफिलिएशन विद फ्लाई ऑन एरो इटली अप्रूव्ड बाय इटालियन सिविल एविएशन अथॉरिटी एनएक
15: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट देन दिस इज योर मोमेंट टू शाइन
14: रियल एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और ग्लोबल करियर एक्सपीरियंस सब कुछ एक ही प्रोग्राम में
13: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk or will be 100% free on scholarship.
16: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
17: Chickenpox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
2: सिटी एफएम 89
1: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन
18: Welcome back, everyone. We're still talking what's going on in the world of fashion. And there are a few more emerging London designers worth keeping an eye on. Petra Fagerström, a Swedish designer and Central Saint Martins master's graduate, is known for experimenting with textiles, particularly her signature lenticular pleating, which can shift visually between transparent and opaque as it moves. Then there's Leo Prothman, who was born in Munich and raised in Mallorca. His background as a competitive horse rider heavily influences his work, combining equestrian structure with a much more experimental high glam approach. His collection blurs the lines between menswear and womenswear, and he brings experience from working alongside designers including Rick Owens, Craig Green, and Matty Boven. What makes London particularly interesting is that these designers aren't necessarily following one established formula. You've got fashion mixed with art, technology, storytelling, performance, and even equestrian culture. And that's really the appeal of London Fashion Week. You never quite know where the next big fashion idea is going to come from. All right, let's listen to our next few songs, and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: You're listening to City FM 89.
3: Trending today.
4: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
1: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
8: We're playing your song.
9: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोसा ऐप से. जैज 5G.
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
11: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
14: सब मुड़ के देख रहे हैं.
15: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
14: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
15: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
14: अच्छी है पर

0: TFM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: TFM 89. We're playing the song.
3: Emergency कभी बता कर नहीं आती.
4: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
5: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
3: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: सिटी एफएम 89.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
4: City FM 89, we're playing the song.
5: Trending today.
6: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
4: City FM 89.
7: You got me going crazy!
3: This show is brought to you by Jazz.
8: You're listening to City FM 89.
9: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
9: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है, और space भी काफी है।
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
9: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
10: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
11: कॉफी का मूड है? तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
12: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
13: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
14: We're playing your song.

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
5: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. Grand, bold and hard to miss.
9: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
10: क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हेडलाइन. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
11: Breathe Pakistan,
12: a Dawn Media initiative.
11: Let's weather the change
12: together.
3: City
1: FM 89.
10: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
2: City FM 89.
7: You got me going crazy!
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
9: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
10: शौकत खानम कराची की तकनीक
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
12: जहां पांच दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89
2: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
5: द रश आवर विद ABD

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hone ja raha hai Pakistan International Auto Show 2026 18, 19 aur 20 September ko Expo Center Lahore mein. Zarur aaiyega.
5: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे टिम हॉर्टन्स कॉफी मिस्ट्री थर्ड कल्चर सेकंड कप ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान तो सिप करें सेव करें और एंजॉय करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
8: City FM 89 We're playing your song
9: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
10: Breathe Pakistan.
11: A Dawn Media initiative.
10: Let's weather the change
11: together.
12: City FM 89, we're playing the song.
9: You're listening to

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
9: City FM 89।
10: You got me going crazy।
11: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे। टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान। तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
1: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.
14: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going through small wins of the week. The first one we have is I successfully completed my entire 30-minute morning workout before hitting the snooze button even once. Amazing! You know, and I think once you start waking up with just one alarm, it completely changes your life and your sleep quality is a lot better. Absolutely amazing. I'm so proud of you. 30-minute morning workout is unmatched. The next one is I managed to keep a delicate indoor plant alive for 3 straight months and today it sprouted 2 brand new green leaves. Oh my God, guys, I have 8 plants in my room. I love plants. I think it is so amazing and it's not easy to keep plants alive, especially when you work a job, life gets hectic. But the fact that you can take care of them is absolutely amazing and seeing new life come from it just makes it all the more special. The last one we have is I organized my entire email inbox down to 0 unread messages for the first time in 3 years. Pure mental clarity. That is amazing. I do not know how you lived with it for 3 years, but I think nonetheless it is a big, big, big accomplishment. This is not a small win. This is a massive win. The fact that you went completely down to zero. I'm so very proud of you guys. Amazing small wins. For those of you that are driving and didn't get a chance to send in your small wins, I am very proud of you regardless for those small wins and I'm sure they are not small, they are big in their own way. Well done guys, I will see you very shortly.

0: your song. Only on City FM 89.
1: It's 8:30 p.m.
2: City FM 89. We're playing the song.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
4: द हार्ट बीट ऑफ योर सिटी, सिटी FM 89।
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
7: City FM 89.
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
9: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G
10: 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Future Sounds.
2: Future Sounds.
12: Vibe with us, your music.
13: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.
8: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.